0: हम सभी नियम से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाते हैं और ऊपर वाले का ध्यान लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भक्तों, लेकिन क्या हम में से सभी अपने घर में बैठी हुई माओं को श्रद्धा अर्पित करते हैं?
1: Inmiddels 4 minuten voor 12. 4 voor 12. En ik heb het al vaker gezegd. Aanstaande zondag, 10 mei, is het moederdag. Dit is een moederdag, Mother Day Songs. Maka Pierre.